हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

हरे कृष्णा। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Solo Sharda.
6: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, इसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा कहता हूं कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर पहुंचे, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कहीं ना कहीं मैंने आज आपको इशारा कर दिया कि आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, विषय होगा रोड सेफ्टी। और जब रोड सेफ्टी का हम जिक्र करते हैं तो जिक्र होता है एक एक्सपर्ट का और जिक्र होता है जो इस क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो कि हरफन मौला हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोड सेफ्टी के लिए बहुत बहुत बहुत काम किया है, खुश मिजाज इंसान है, हरफन मौला है, आप हैं अंकुर शरण जी। तो अंकुर जी, सुरुशादा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
7: थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट ऑनर।
6: थैंक यू सर, वेलकम। कैसा लग रहा है शारदा विश्वविद्यालय के इस आंगन में आकर आपको?
7: बहुत खूबसूरत सफर रहा, जब मैं एंटर किया इस कैंपस में लिटरली दिल खुश हो गया, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ का वातावरण आप लोगों ने बनाया है, स्पेशली जो ग्रीन इन्वायरमेंट आप लोगों ने जो क्रिएट किया है, दिस इज रियली अमेजिंग एंड ऑसम। ऐसा जस्ट कि अंकुर, तो भाई मैं तो पर्यावरण से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहूंगा कि पर्यावरण से हर कोई जुड़े और कहीं ना कहीं अपना योगदान देता रहे।
6: माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कम शब्दों में आपने रख दी और मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक पौधा अपने माँ के नाम जरूर लगाइए, इस धरा को हरा भरा करिए। और जब इस तरीके से इस आंगन का जिक्र हो रहा है, इस प्रांगण का जिक्र हो रहा है, तो जिक्र करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमारी जो टैगलाइन है सर, टैगलाइन ये है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। और यही वजह है कि यहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान है। हिंदुस्तान टाइम्स में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर आप सर्विस कर रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं जन सेवा यानी कि रोड सेफ्टी पर बहुत धरातल पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप हैं अंकुश शरण जी। और अंकुश शरण जी एक लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है कि ए भाई जरा देख के चलो। ये लाइन है कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी पर सटीक बैठती हैं। क्या कहना चाहेंगे रोड सेफ्टी के बारे में?
1: देखिए, रोड सेफ्टी एक अभिन्न अंग है हम सब का। हम चाहे जहां से भी आते हैं, जिस समाज को भी हम बिलोंग करते हैं, हम चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, आप सब सड़क को यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि सड़क पे चलते हुए हमें हमेशा ध्यान में तो रहना चाहिए, साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि रोड सेफ्टी की प्राथमिकता को हमें नजरअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे हम स्कूटर चला रहे हो, टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, हम लोग देखते हैं कि लापरवाही कि हम लोग ने जिस एटीट्यूड में हम लोग रहते हैं, तो उसी एटीट्यूड के साथ अगर हम रोड पे चलते हैं तो डेफिनेटली उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है
0: जी।
1: तो थ्रू रोड सेफ्टी कैंपेन के द्वारा हम लोग बहुत सारी ऐसी जानकारियां लोगों तक साझा कर रहे हैं, साथ में वॉलंटियर्स नेटवर्क को पैन इंडिया लेवल पे हम लोग रोड सेफ्टी स्क्वाड की मदद से कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम वॉलंटियर्स हमारे बने, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। फिर अपने शब्दों को दोहराते हुए यही कहूंगा कि कम शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि सुरक्षित चलें, सुरक्षित घर पहुंचें, सुरक्षित ऑफिस पहुंचें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जरा सी भी स्पीड आपकी ओवर स्पीड होती है तो कहते ना कि अपने पर्स में से अपनी फैमिली का फोटो निकाल लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं एक अलार्म आपके दिमाग में घंटी बजेगी, नहीं यार मुझे ओवर स्पीड में नहीं चलना है। क्योंकि ओवर स्पीड में चलेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी। और जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे तो आपको याद रहेगा कि नहीं, सुरक्षित चलना है, सुरक्षित घर या सुरक्षित ऑफिस पहुंचना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते समुदाय की बातें करते हैं, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने जिंदगी को जीने की बातें करते हैं और बातें करते हैं रोड सेफ्टी के बारे में। ये एक ऐसा विषय जिसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, आपका अंग भंग हो जाता है या कभी कभी आपकी मृत्यु तक हो जाती है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हिंदुस्तान टाइम्स से आप हैं अंकुर शरण जी। तो अंकुर जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। अभी मैंने जिक्र किया कि अंग भंग हो जाता है, कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है, तो ऑन ग्राउंड में अगर बात करूं आपसे धरातल पर मैं जानूं कि किस तरीके के हालातों को आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
1: देखिए, हम लोगों ने रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत काम किया है और शासन प्रशासन के साथ मिलकर जो भी हो सकता है हम लोग उसकी अवेयरनेस कैंपेन्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि उसे धरातल पर लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम लोग को चाहिए कि जो भी बातें हम लोग को बताई जाती है, समझाई जाती है, उन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में उतारना है। वो सिर्फ लिखित बातें या कोरी बातें नहीं है, उसे हम जितना ज़्यादा गंभीरता से लेंगे अपनी लाइफ को हम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उसका तो इलाज है, लेकिन हादसों का कोई इलाज नहीं है। उनका सिर्फ बचाव है कि जब हम सतर्क रहेंगे तो अपने आप को बचाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जिस समय कोई भी एक्सीडेंट होता है उस समय जो प्राइम टाइम जो होता है हम लोग का राइट गोल्डन आवर, उसके अंदर क्या हम
0: मॉर्निंग और इवनिंग टाइम
1: नहीं, जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके एक घंटे के अंदर।
0: अच्छा, उस प्राइम टाइम की बात।
1: प्राइम टाइम, ओके। तो जो गोल्डन आवर होता है वो बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब हम लोग क्या होते हैं कि भागा दौड़ी में इतने ज्यादा हो चुके हैं हमें ध्यान ही नहीं रहता। तो आज चाहे हम किसी के ऊपर भी दोषारोपण करें, सबसे पहले हमें अपने ऊपर देखना है, अपनी स्पीड पे लगाम लगानी है, हमें समय पर पाबंद होके काम करना है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हम मूक बधिर होके ना चले। मैं हमेशा से एक रोड सेफ्टी स्क्वाड बनाने से पहले मैं खुद एक वॉलंटियर रहा काफी समय तक। जब भी कभी मैं देख

0: का रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ तो जाने अनजाने मुझे, अगर मैं नहीं भी जानता हूं उनको, तब भी मैं अपनी गाड़ी से साइड लगाकर देखता, अगर गंभीर है तो इमिडिएटली फोन कर दिया। अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर है तो हम लोग के पास एक अपनी टीम है, हम लोगों ने उस पर फोन करके ट्रैफिक के, हम लोगों ने अपने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं नोएडा का, फरीदाबाद का, गुड़गांव का, एनसीआर लेवल का, कि जिसमें डीसीपी ट्रैफिक से लेकर हर वो आला अधिकारी जो भी ट्रैफिक से जुड़ा है वो उसके अंदर लोग जुड़े हुए हैं, ताकि हम लोग स्पीड में तुरंत कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं ऐसा जाम लग जाता है जो कि अननेचुरल है
1: जी,
0: तो उसके बारे में भी तुरंत हम लोग बता देते हैं ताकि उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जा सके।
1: क्या बात है। लिसनर्स, कहने का आशय यही है कि इसका अगर मैं क्रक्स निकालूं, इसका एक सारांश निकालूं, तो उस वक्त आप देख हुए अनदेखा न करेगा, हो सकता है कि बड़ा पछतावा होगा जब आपको पता चले कि उस वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था आपने वहां देखा नहीं, मदद नहीं की, वो आपका कोई सगा संबंधी था, जिंदगी भर एक पछतावा रह जाता है। लेकिन आप देखिए और तुरंत पुलिस को सूचित करिए, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। और दूसरी बात, आज मैं देख रहा हूं वर्तमान समय में सरकार प्राथमिक उपचार के लिए खर्च भी कर रही है, जो इस तरीके रोड एक्सीडेंट्स के केसेस तुरंत पहुंचते हैं क्योंकि कोई सगा संबंधी उस वक्त वहां होता नहीं है। अंकुश शरण जी जो कि एक एक्सपर्ट के तौर पर रोड सेफ्टी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं, आप हैं अंकुश शरण जी। बहुत अच्छे एक पत्रकार के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रोड सेफ्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से एक नामी गिरामी आपका ये अखबार, उससे आप जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: रोड सेफ्टी के बारे में आपने जिक्र किया था कि लोग मूक बधिर यानी कि चुप हो जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से एक पछतावा होता है कि काश मैं उस वक्त उस व्यक्ति की मदद कर देता जो कि मेरा सगा संबंधी था। जब ये शब्द आता है तो लोग दिमाग की बत्ती जलती है। मैं ये जानना समझना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट्स होते ही क्यों हैं, क्या एक वजह है कि हम सबको पता है कि ये हमारी एक लिमिट है, उस लिमिट को हम क्रॉस कर जाते हैं। ओवरटेक आप कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी लेन से ही क्रॉस कर रहे होते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, इधर-उधर से वो गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो है नेग्लिजेंस। ये एक ऐसा वर्ड है कि जो एक तो लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड नेग्लिजेंस, इसी वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। हमें जब पता है कि आपके ऑफिस का टाइम 9 बजे है और आपके घर से ऑफिस पहुंचने में आपको 1 घंटा लगना है, तो आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले आप निकलिए,
0: क्या बात,
1: ताकि आप उस जो पी कार्स है उससे बचा जा सके। अब लोग क्या करते हैं कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग पहले तो लेट निकले और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हम स्पीड पे ओवर स्पीडिंग करके, और क्योंकि जैसे फरीदाबाद से अब गुड़गांव जाते हैं तो पहाड़ी का रास्ता है, राइट, उस पे 60 से 80 स्पीड अलग अलग जगहों पे बनाई हुई है, लेकिन लोग अक्सर उस पे बहुत स्पीड में जाते हैं। अब क्या है कि उससे एक तो वो वन अरावली वन क्षेत्र भी है, कई बार उसमें गाय भैंस इस तरीके से बंदर वहां पे बहुत होते हैं, अचानक से कोई आ गया और अक्सर हम लोगों ने वहां पे एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि भाई इन्फोर्समेंट को आप इतना मत उकसाओ कि वहां पे स्ट्रिक्टनेस इस लेवल की कर दी जाए कि वो आप ही पे भारी पड़ जाए।
0: जी,
1: प्रशासन के तौर पर, क्योंकि हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी
0: जुड़े,
1: उनकी बातों को भी हम लोग लेकर आते हैं, क्योंकि इट्स अ, जैसे कहते हैं ना, कॉइन के दो पहलू होते हैं, लाइक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरीके से हम लोग ने ब्लेम तो तुरंत कर देते हैं कि भाई इनकी वजह से ये हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम सब डिसिप्लिन में अगर गाड़ी चलाएं, राइट, हमें ओवरटेक करने के बड़ी गंदी आदत है, और वही गंदी आदत जो है वो अब एनसीआर से निकल के हम पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो हम वही चीज करते हैं। तो सेम वे हम लोग की ये रडार पे हम लोग हमेशा देखते हैं लोगों को कि कौन कौन सी गाड़ियां अगर देहरादून के क्षेत्रों में गई हैं, तो हमारे पास वो सारा डेटा आता है कि देखिए सबसे ज्यादा एनसीआर की जो गाड़ियां होती है वो जाके इस तरीके से कर देती हैं। तो हमें लगता है कि अभी डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखिए और इन्फोर्समेंट खुद पे आप रखिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सड़क भी सुरक्षित रहे।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दिया। और बस हमेशा जब हम सारांश निकालते हैं, एक निचोड़ निकालते हैं, इस बात का सारांश या यूं कहें कि निचोड़ यही है, यकीन मानिए कि आपकी फैमिली, आपके माँ बाप भाई बहन, आपके छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं दरवाजे पर। जब एक दस्तक होती है वो खुश हो जाते हैं कि मम्मी मम्मी पापा आ गए, लेकिन जब खबर आती है कि आज उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, तो बहुत बहुत बहुत बुरा लगता है। ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते, जिनसे भी आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और अक्सर से दो लाइनें मैं खुद कहा करता हूं कि ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, इस जान पर आपके माँ बाप भाई बहन सबका हक है, तो उनकी जान की खातिर अपनी जान का ख्याल रखिए, तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का फर्ज यह है कि समुदाय में हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उन बातों को हम जन जन तक पहुंचाएं। रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन जाने अनजाने में लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से जिंदगी भर एक पछतावा रह जाता है कि काश मैंने यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन किया होता तो आज मैं सुरक्षित होता या अंग भंग नहीं होता। ये सारी बातें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय, इस विषय पर बात करने के लिए अंकुर शरण जी हिंदुस्तान टाइम्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ऑन रोड जब मैं देखता हूं तो मुझे पता है कि राइट हैंड की जो लेन है वो कार के लिए है। ओवरटेक करना है तो राइट हैंड से हम करें
1: जी।
0: लोग गलत दिशा से ओवरटेक कर रहे होते हैं। इसके विपरीत भी सर हमने ये देखा है कि बसें जो लेफ्ट में चलनी चाहिए थी या ट्रक भी लेफ्ट में चलना चाहिए था वो राइट हैंड में जाके चल रहा है। कैमरास लगे हुए हैं। शायद मैंने जो अनुभव किया है कि हम या पुलिस प्रशासन इंतजार करता है कि मेरे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, कंप्लेन नहीं हुई है, या यूं कहें कि कभी कभी वो स्वतः संज्ञान लेते हैं। चूंकि आप रोड पर काम कर रहे हैं, आपका अनुभव वही बात निकलकर सामने आती है कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही है गलत है या क्या सुधार की आवश्यकता है?
1: देखिए, हम लोगों ने सुना है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती।
0: सही कर,
1: हम लोग जब तक गाड़ी चला रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सोचिए हजारों लाखों गाड़ियां रोड पे दौड़ रही होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाड़ी भिड़ती है
0: जी,
1: एक्सीडेंट होता है
0: जी,
1: लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं
0: जी,
1: उन सब को अगर हम लोगों ने जब देखा है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ओवरटेक अगर ये हुआ है, अगर गलत डायरेक्शन से हुआ है
0: जी,
1: तो पहली तो पेनल्टी उस इंसान के ऊपर आ जाती है कि जिसने ओवरटेक गलत तरीके से किया।
0: यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो सारा मतलब
1: ये सारा कुछ, क्योंकि एज पर जो रिकॉर्ड्स देखा जाता है, जब प्रत्यक्ष गवाही जब ली जाती है या एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि आप ये देखिए इंश्योरेंस आप लोग क्लेम करते हैं, अगर मैं मान लीजिए कि इंश्योरेंस वाला हूं तो मैं भी तो देखूंगा ना कि भाई हमारी कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस दे रही है तो कहीं आप गलत ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, कल आप वो मैल प्रैक्टिस में तो नहीं है कि आपने नशा किया हुआ है तो आप नल एंड वॉइड हो जाता है, गलत डायरेक्शन से आपने ओवरटेक किया तब वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे ध्यान में रखने की जरूरत होती है। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोगों ने अपना लाइसेंस बनवा लिया, हमारे हाथ में फोन आ गया, महंगी कारें आ गई, तो सोचा चलो अब तो ये रोड अपनी है। रोड आपकी नहीं है, रोड एक समाज की है, समाज के भी आप अभिन्न हिस्सा हैं। जब हम लोगों ने देखा, नितिन गडकरी साहब से जब मुलाकात हुई और एक युवा रोड सम्मेलन एक हुआ था उसके अंदर हमें उनसे मिलने का मौका मिला, तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे रोड्स तो बना दिए लेकिन इस पे चलने की जिम्मेदारी आप सबकी है,
0: बेशक
1: युवाओं की है
0: बहुत से।
1: अगर आपको बहुत रक्तदान देना है तो सड़क पे मत दें। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो कि आपसे रक्त मांग रही हैं, तरीके से दें ताकि किसी का भला हो सके। मेरे एक अजीज मित्र हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र जी,
0: जी जी,
1: उनकी भी कहानी ऐसी दिलचस्प है कि जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज दम तोड़ रहे हैं रोड पर, तब उन्होंने किस तरीके से प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपने एक जिगरी दोस्त की जब उनकी डेथ हुई ऑन रोड, उसके बाद उन्होंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेते हुए देखा कि वो जो उनका दोस्त की डेथ हुई वो बिकॉज ऑफ वो हेलमेट उस समय नहीं पहने थे, वो इकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के, और इस हादसे के बाद उन्होंने संकल्प लिया और आज वो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूरे देश में प्रचलित हैं। और हम लोगों ने उनके साथ भी मिलकर रोड सेफ्टी स्क्वाड के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हम लोग प्लान कर रहे हैं, और अब आपके इस माध्यम से भी हम लोग चाहेंगे कि लोग सुरक्षित रहें। बस
0: क्या बात है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है लिसनर्स। मैं तो आशा करता हूँ कि बस ये छोटी छोटी बातें इनको नजरअंदाज ना करिए। माशाल्लाह जिंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। आप घूमना चाहते हैं, आप किसी शादी में शिरकत करना चाहते हैं, जिंदगी को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो भाई साहब ये तभी संभव होगा जब आप यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करते हुए अपने गंतव्य अर्थात बोले तो डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचेंगे सुरक्षित, तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी।

नहीं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है और एक अच्छे विषय पर हम बात कर रहे हैं और एक अच्छी बात हम बात करेंगे ब्रेक के उस पार, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग रील के चक्कर में उनकी रेल बन जाती है। क्या है ये सवाल, जवाब क्या होगा, जानेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल इन सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। रोड सेफ्टी पर आज हम बात कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं रेडियो में हैं हमारे साथ हमारे अजीज दोस्त। हमारे साथ हैं अंकुर शरण जी जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से ताल्लुक रखते हैं और रोड सेफ्टी पर धरातल पर प्रशासन से मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर इस सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिली दुआएं शुभकामनाएं आपके लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल आपके सामने छोड़ा था कि आजकल हम देखते हैं कि रील के चक्कर में लोगों की रेल बन जाती है, या तो वो एक साजिशन तौर पर ऐसा कर रहे होते हैं या उनको डर नहीं है कि सिर्फ 5,000 का चालान कटेगा या फिर 5,000 का चालान कोई बड़ी बात नहीं है, रील के चक्कर में मेरे पास व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। और कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता, यूं कहें कि अंग भंग या वो खुद नहीं होते दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, व्यूज के चक्कर में दुनिया पागल हो रही है। अब अगर आपने रोड को भी आपने सोच लिया कि वहां पे भी हमें व्यूज लेना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू जो है वो अखबारों में छप जाए। अच्छे काम के लिए आप लोग छपें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो युवाओं से एक ही एक अनुरोध है कि रील्स के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। अगर आपको रील वाकई में बनाना है तो आप सड़क सुरक्षा के ऊपर बनाइए और बना के रोड सेफ्टी स्क्वाड को टैग कीजिए। हमारी संस्था है रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन, राइट, जो कि हरियाणा सरकार के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारा काम हम लोग फरीदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़ में,
0: और आप कह सकते हैं गगन आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से मैं आता हूं।
1: आप तो हैं ही जुड़े।
0: थैंक यू सर।
1: तभी सर हम लोग को कोशिश रहती है कि हम युवाओं को किस तरीके से लीड बाय सेटिंग एग्जांपल्स दें। और अगर आप वाकई में अच्छी रील्स बनाना आपको आता है तो प्लीज क्यों ना आप सड़क सुरक्षा के ऊपर ऐसी रील्स बनाएं ताकि उसको हम अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे डालें। हरियाणा पुलिस से लेकर ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपके चीजों को आगे प्रदर्शित करेगी और प्रॉपर चैनल्स के साथ प्रदर्शित करेगी, तो डेफिनेटली उसमें व्यूज भी मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं हम लोग सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी दिलवाएंगे।
0: क्या बात है, व्यूज भी मिलेंगे और आपकी न्यूज भी छपेगी। yes. अच्छी सकारात्मक दिशा में। सर वक्त का इशारा लगभग हो ही चुका है और मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा जब भी आप इस तरफ आए तो जरूर आएगा, क्योंकि भाग दो हम करना चाहेंगे क्योंकि बातें बहुत ज्यादा है, समय मेरे पास कम है। एक छोटी सी वाकया को अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं, आप भी हम भी, अननेसेसरी लोग क्या मानसिकता होती है, उनको दिख रहा है कि वो 500 मीटर तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पीछे से पैं पौं, यानी कि अनावश्यक तौर पर वो हॉर्न बजा रहे होते हैं। इस मानसिकता से लोग कैसे निकलें, कैसे वो अपने आप को एक सही दिशा में लेकर जाएं उन लोगों के लिए, या यू कहें कि एक क्रक्स, एक संदेश क्या होगा हमारे लिसनर्स के लिए?
1: देखिए, मेंटल हेल्थ मैटर्स।
0: क्या बात है।
1: अगर आप मेंटली अनफिट हैं और अगर आपकी वजह से दूसरे परेशान हो रहे हैं तो निसंदेह लॉ ऑफ कर्मा आपको इस तरीके से वो मेंटल प्रेशर डाल देगा कि या तो आप गाड़ी चलाने लायक नहीं बचेंगे। और हम लोगों ने एक बड़ा सिद्धांत के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि अगर आपने वाकई में एक इंसानियत दिखानी है तो आप वहां पे हॉकिंग का प्रयोग कीजिए जहां पे इसकी वाकई में आवश्यकता है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे बहुत ही डिसिप्लिन में लोग गाड़ी चलाते हैं और हॉकिंग, स्पेशली अगर आपको देखना है तो जाके आप चंडीगढ़ में जाके चलाइए गाड़ी, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने तरीके से लोग वहां पे गाड़ी चलाते हैं।
0: सर ये दूर की बात आपने की है, अगर नियम कायदे कानून देखना है तो जनपद के आसपास देखें, सिर्फ वही नियम लगा।
1: आप ये देखिए कि अगर वही वाली बात है ना, स्ट्रिक्टनेस एंड एनफोर्समेंट, जब दिल्ली पुलिस आपके जब तत्पर खड़ी होती है, तत्पर है, तो आप बहुत ज्यादा
0: सीट बेल्ट लगा लेते हैं,
1: बेल्ट खौफ में नजर आएंगे, डिसिप्लिन में रहते हैं। और ये डिसिप्लिन होना चाहिए,
0: होना ही
1: चाहिए। मैं तो ये चाहूंगा कि एनसीआर लेवल पे जहां पे भी अगर आपको पुलिस दिखती है, और पुलिस ही नहीं, आप खुद में कंट्रोल रखिए सारी चीजें, क्योंकि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देख रहा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चर्चा रही है सर आपके साथ और बहुत अच्छे आप वक्ता है। मैं तो ये कहूंगा कि आप इधर भी आकर, यानी कि ऐसे आरजे के तौर पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत अच्छी, अच्छा ज्ञान है और अच्छी तरीके से कट टू कट बात आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है। कुछ और कहना चाह रहे हैं
1: गगन जी? एक आपके माध्यम से मैं चाहूंगा जो भी लिसनर्स हैं, आज भारत को बहुत सारे वॉलंटियर्स की जरूरत है। लीडर्स तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अगर आप सही माने में अगर वॉलंटियर बनते हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति अगर आप जागरूक हैं भी और करना चाहते हैं, तो प्लीज आप शादा को सुनिए 90.8 FM, और साथ ही में जो लिसनर्स आपको लगता है कि हाँ दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ आवर रोड सेफ्टी स्क्वाड, प्लीज डू कनेक्ट विद अस. हम लोग ट्विटर पे भी मौजूद हैं,
0: सो प्लीज टेल अस सर वो डिटेल्स क्या है, वो आईडी क्या है या कांटेक्ट नंबर क्या है.
1: आप सीधा कि आप ट्विटर पे एक्स पे जाके रोड सेफ्टी स्क्वाड डालिएगा, हमारा पेज उसके अंदर आ जाएगा. साथ ही में जो लिखना चाहते हैं कुछ वो प्लीज लिख के दें. हम लोग ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओस के साथ मिलकर इसको पूरे भारतवर्ष में चीजें बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार के साथ माध्यम से. आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया, जिस भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं प्लीज जुड़िए, ताकि लेट्स बी वोकल फॉर लोकल रोड सेफ्टी.
0: क्या बात है, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सर एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि समाज को आपकी आवश्यकता है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और बस लिसनर्स यही कहूंगा कि समझदारी दिखाइए, अपने आप को बीमार मत प्रदर्शित करेगा ऑन रोड. जिस तरीके से हमारे गेस्ट ने ये बात रखी है कि कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी आप दिखा रहे होते हैं, क्योंकि अनावश्यक तौर पर जब आप हॉर्न बजाते हैं और अनावश्यक तरीके से गाड़ी को जब आप ओवरटेक करते हैं, या कुल मिलाकर यही कहूं कि यातायात के नियमों का हमें अच्छी तरीके से पालन करना है. घर में, ऑफिस में कहीं ना कोई आपका इंतजार कर रहा है. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी आपका इंतजार कर रही है. तो बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और यातायात के नियमों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए. और बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ. सोमवार से शनिवार सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ. और इसके अलावा फीडबैक, कमियां, खूबियां जरूर बताएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा. 01204060205 अर्थात 120 40 60 205. इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ec.in पर भी आप हमें मेल के जरिए मेल जोल बढ़ा सकते हैं. वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9 to 11. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. नमस्कार.

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: डील बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट वेरी टाइट।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है। इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
6: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
7: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए

0: लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना

तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.
6: अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। जब इसकी कमी होती है तो शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कमजोरी महसूस होने लगती है। इसे आम भाषा में खून की कमी भी कहा जाता है। राम राम, दोस्त सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। और आज का जो विषय है आप समझ ही गए, खून की कमी यानी कि अनीमिया के विषय के बारे में बातें होंगी। ये जो विषय सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शालू गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं और इनसे बात कर रही हैं स्मार्ट की सहयोगी सुजाता। तो आइए सुनते हैं ये विशेष चर्चा सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
7: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत है? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
7: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
7: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
8: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
7: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
8: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
7: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
8: ये एक बहुत अहम प्रश्न है क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
7: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
8: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
7: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
8: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
7: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
8: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
7: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
8: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हो, CHCs हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
7: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
8: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
7: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
8: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
7: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
8: मैं इसमें दो बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराए, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
7: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
8: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
7: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
8: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
7: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
8: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के 1-2 घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप आपको कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवा किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर एनीमिया हो, मॉडरेट एनीमिया हो, तो ज़रूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
7: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
8: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है, वो उन्हें दिया जाता है।
7: तो क्या वो हर CSC PSC पर उपलब्ध?
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो, तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो, या ANMs हो, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
7: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
8: धन्यवाद, और मैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
6: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शालू गुप्ता को, इनसे बात कर रही थी स्मार्ट की सहयोगी सुजाता। सब्जेक्ट था एनीमिया, यानी कि खून की कमी। अगर खून की कमी हो रही है तो दिक्कतें परेशानियां हम सब के शरीर में हो सकती हैं। खून की कमी ना हो इसके लिए आयरन बहुत जरूरी है, यानी लोहा शरीर में, विटामिन बहुत जरूरी है, और भी इस तरीके से जो आप के शरीर के लिए लाभकारी है वो सारी चीज़ें आप खाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आप ले पाएंगे। कहने का आशय यही है कि खून की कमी आपके शरीर के अंदर ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
9: तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है, टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
10: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
9: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
10: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा, देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
9: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
11: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
10: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
12: कल नहीं, अभी।
11: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
13: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ,
3: दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ओरिजिनल क्रेडिट्स एल्बम हीरा पन्ना, सिंगर किशोर कुमार, लता मंगेशकर, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, म्यूजिक डायरेक्टर आदी बर्मन, और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया है। सो लेट्स एंजॉय इट। रिक्रिएशन क्रेडिट्स आर्टिस्ट दीपशिखा रैना, म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक। चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है, सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर। पन्ना

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के,

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, भारत सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है और इन योजनाओं के जरिए जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। वही समय समय पर कई पुरानी योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए इनमें बदलाव भी किए जाते हैं, जबकि कई योजनाओं को नए तौर पर शुरू किया जाता है। जैसे सितंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की थी। किसान मित्रों, इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को लाभ पहुंचाना है जो 18 पारंपरिक व्यापारों से जुड़े हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ काम को एडवांस तौर पर सीखना बल्कि कई आर्थिक लाभ भी दिए जाते हैं, बशर्ते कोई भी इस योजना के लिए पात्र हो और इस योजना से जुड़ा हो। और अब किसान मित्रों बात करते हैं उन 18 पारंपरिक व्यापारों की जिनसे जुड़े लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसे जो लोग दर्जी हैं, जो लोग जूता बनाने का काम करते हैं, जो लोग मूर्तिकार हैं, जो लोग नाई का काम करते हैं, जो लोग पत्थर तोड़ने वाले हैं, जो लोग ताला बनाने का काम करते हैं, जो लोग गुड़िया और खिलौना बनाते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, लोहार हैं, जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं, जो लोग हथौड़ा और टूल किट बनाते हैं, जो राजमिस्त्री हैं, जो लोग टोकरी चटाई झाड़ू बनाने का काम करते हैं, जो लोग माला बनाने का काम करते हैं, जो लोग कपड़े धोने का काम करते हैं और जो लोग पत्थर तराशने का काम करते हैं, तो ये सब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों को कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग लाभार्थियों को एडवांस तौर पर दी जाती है, जिसमें उनको अपने काम को और बेहतर करने का काम सिखाया जाता है। इसके लिए जब तक ये प्रशिक्षण दिया जाता है तब तक उनको रोजाना 500 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा लाभार्थियों को 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। अब बात आती है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। तो कोई भी जो 18 पारंपरिक व्यापारों में से किसी भी काम से जुड़ा हुआ है तो वो अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में, और आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की तरफ और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं तरुण बाल्यान।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे तरुण बाल्यान से ये उपदेश। किसान मित्रों, आपकी सहायता के लिए प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हमारे किसान भाइयों की हर एक समस्या का समाधान किया जाता है। हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान का केंद्र है। यदि हमारे किसान भाइयों को खेती करने में किसी भी तरह की समस्या आती है, जैसे फसल पर कीट लग जाते हैं, फसल पर रोग का प्रकोप है, फसल में खाद की मात्रा कितनी देनी चाहिए, नई फसल की जानकारी, कृषि यंत्रों के इस्तेमाल और जैविक खेती करने में कोई समस्या आ रही है, आपके क्षेत्र के अनुसार कौन कौन से उत्तम किस्म के बीज हैं। किसान मित्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों पर कृषि से संबंधित बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे किसान चौपाल, किसान मेला, एकीकृत कृषि प्रणाली, मिट्टी परीक्षण, कृषि में उपयोग होने वाली नवीनतम तकनीक, कृषि मशीनरी और उपकरण, सिंचाई प्रणाली और कृषि प्रदर्शनी की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा फसल में लगने वाले कीट और रोगों से संबंधित जानकारियों के साथ साथ किसानों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। किसान भाइयों को इन कार्यक्रमों में आमदनी बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सभी कार्यों की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है। इसके अलावा समय समय पर किसान भाइयों को मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्मिंग और जैविक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इस तरह के प्रशिक्षण लेकर हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कृषि विज्ञान केंद्रों की उपयोगिता के बारे में। और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा द्रौपदी चीरहरन का और गायक कलाकार हैं रविंदर खालौर।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंदर खालौर से ये रागनी, किस्सा था द्रौपदी चीरहरण का। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी है। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देना है। तो हमारे जो भी युवा साथी हैं और कुछ रोजगार हासिल करना चाहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं या पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, तो वो अपने नज़दीकी आसपास देखें, कोई कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र होगा वहां जाकर के संपर्क कीजिए और जिस काम में आपकी रुचि है उसके अनुसार आप कोर्स का चुनाव कर सकते हैं और उसमें प्रशिक्षण लेने के बाद आसानी से रोजगार हासिल कर सकते हैं और यही इस योजना का उद्देश्य है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं योगेंद्र निमचाना से एक रागनी, किस्सा रहेगा रामायण का।

योगेंद्र निमचाना द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.

0: शरीर अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें,
ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को। सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी

0: गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं
2: समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: नमस्कार श्रोताओं, और आपके साथ आपकी दोस्त व होस्ट नव्या है। कार्यक्रम है हिंसा को नो। जी हाँ, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो। और आज के इस विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति, जहाँ हम एक सच्ची घटना पर आधारित हिंसा के इस विशेष कार्यक्रम के साथ हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है अवंतिका। अवंतिका काफी चुलबुली टाइप की लड़की थी और इसके साथ साथ वो होनहार भी उतनी ही थी। वो करीब 19 साल की थी और उसे स्पोर्ट्स काफी पसंद थे, लेकिन पसंद होने के बावजूद भी वो उस क्षेत्र में नहीं जा पाई, क्योंकि इसके पीछे एक घटना है। कुछ सालों पहले उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। घर में आई सौतेली माँ ने उसे सिर्फ घर का ही काम करवाया, उसे किसी भी तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया। वो कुछ भी करना चाहती तो उसकी माँ उसे रोक देती, बस घर का ही काम करवाती थी। लेकिन अवंतिका इस बात का कभी भी बुरा नहीं मानती, वो हमेशा अपनी माँ का कहा हुआ काम करती थी। स्पोर्ट्स में उसकी रुचि तो थी, लेकिन वो अपनी माँ के डर से अभ्यास नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता, अपनी माँ से छुपकर वो अभ्यास कर लिया करती थी। इतनी चुलबुली और होनहार अवंतिका को ये नहीं पता था कि बहुत जल्दी उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आने वाला है जो पूरी तरह से उथल पुथल कर रख देने वाला है। और ये वही वक्त था जब उसके घर में उसकी सौतेली माँ के दूर के रिश्तेदार का आना हुआ।
7: अरे आ रही हूँ बाबा, डोर तोड़ दोगे क्या? कौन है?
8: अब दरवाजा खोलिएगा तब तो पता चलेगा कि कौन है।
7: अरे दिग्विजय, तुम बड़े दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा।
8: अब आंटी अंदर बुलाइएगा तब तो हम आपको बताएं अपने बारे में, दूर से ही पूछ जाओ आप।
7: अरे नहीं नहीं, आओ अंदर आओ, बैठो।
8: कैसी हैं आप?
7: बढ़िया है, तुम बताओ सखी हमारी कैसी है?
8: वो बहुत ही अच्छी है, बीच में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था लेकिन अब सब सही है। और अपने घर गई हुई हैं, उनके भाई आए हैं ना बहुत दिनों बाद, बस गई हैं भाई से मिलने अपने।
7: अच्छा अच्छा, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? वैसे तुम्हारी पत्नी के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ, क्या सोचे हो आगे?
8: अब देखे ना आंटी, भगवान के आगे किसकी चलती है। वैसे कारोबार ठीक चल रहा है, कारोबार में आदमी बिजी है और पता ही नहीं चला कि सुरभि के गुजरे 2 साल हो गए हैं, पर आंटी कहीं ना कहीं खाली सा तो लगता ही है।
7: तो बेटा एक बात बताओ, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते?
8: अब कहां आंटी, आज के जमाने में कोई बढ़िया लड़की मिले वो वाइब मैच नहीं हो पाती है।
7: मान लो उम्र भी तो तुम्हारी निकलती जा रही है, बाल भी सफेद हो गए।
8: वैसे आंटी जी कहा जाता है कि घोड़ा जब बूढ़ा होता है तो और जवान हो जाता है।
7: अच्छा ये बात है, खैर छोड़ो इन बातों को, कुछ पानी वानी पी लो। तुम बैठो यहाँ, मैं अवनी को भेजती हूँ और तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ मैं। अरे अवनी, तुम यहाँ अंदर बैठी हो, तुमको दिखाई नहीं देता है बाहर कोई आया है?
9: कौन है माँ?
7: तब से बाहर बैठ के उनसे बातें कर रही हूँ, तुम्हें आवाज से भी नहीं समझ में आया कि बाहर कोई आया है?
9: माफ करना माँ, मैंने ध्यान नहीं दिया।
7: चलो ये पानी पकड़ो और लेके जाओ, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ।
9: ठीक है माँ। भैया ये पानी ले लीजिए।
8: अरे तुम अवनी हो ना? यार तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, काफी सुंदर भी लग रही हो। कौन से क्लास में पढ़ती हो?
9: बीए फर्स्ट ईयर है भैया।
8: एक सेकंड, पहले तो तुम ये भैया भैया छोड़, मैं तुम्हारा कोई सगा भाई थोड़ी ना, मैं तो तुम्हारे मम्मी की सहेली का बेटा, तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाती?
9: आप बड़े हैं लेकिन।
8: तो क्या हुआ? इज जस्ट अ नंबर, ऐसे मैटर नहीं करता। मेरा नाम दिग्विजय है, तुम मुझे दिग्विजय कहो तो काफी अच्छा लगेगा मुझे।
7: और क्या बातें हो रही हैं आपस में तुम दोनों की?
8: कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस इसे पूछ रहा था कि कौन से क्लास में है, क्या कर रही है, आगे फ्यूचर में क्या क्या करना है, एम क्या क्या है इसका, बस यही सब और कुछ नहीं।
7: अच्छा अच्छा, चलो अगर बातें हो गई हो कि अंदर जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है तुम्हारे लिए।
9: हाँ मैं जाती हूँ।
8: आंटी।
7: हाँ बोलो बेटा।
8: मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था।
7: हाँ बोलो ना।
8: आंटी अभी जस्ट आपने बोला ना कि मुझे दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए।
7: हाँ बिल्कुल, तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है अभी।
8: आंटी देखिए, आपको तो पता ही है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे की कोई कमी है नहीं, और जो लड़की आएगी वो बहुत खुश रहेगी, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो खुश नसीब अवनी क्यों ना बने।
7: और
8: हाँ आंटी, मैं इसके लिए मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, और मैं उल्टा आपको 15 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ।
7: लाख
8: कम है तो मैं आपको 20 लाख देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अवनी से शादी करनी है। और यहाँ तक कि मुझे पता है कि अंकल की जॉब भी ठीक तरीके से नहीं चल रही है, उनकी भी जॉब छूटने वाली है, तो मैं उनकी जॉब भी लगवा सकता हूँ अपनी कंपनी में, बहुत अच्छी सैलरी पे रहेंगे।
7: बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ, तुम्हारे अंकल से बात करती हूँ।
8: बिल्कुल आंटी जी, देखिएगा अगर चाहिए तो कुछ पैसे आप और ले लीजिएगा, यकीन मानिए उतने पैसों में आप पूरी जिंदगी बैठ के खा सकती हैं, और उसके बाद से भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कहिएगा, मैं वो सारी सुविधाएं आपको दूंगा, बस मेरी शादी आप अवनी से करवा दीजिए।
7: अरे हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, मैं तुम्हारे अंकल से आज ही बात करूंगी इसके बारे में, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे अवनी तो राज करेगी राज, और साथ में हम भी राज कर लेंगे।
6: अवंतिका की माँ ने इस तरह से लालच में पड़कर दिग्विजय को हाथों कर दिया और दिग्विजय की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, क्योंकि वो खुश था कि किसी ना किसी तरह अवंतिका की माँ, जिसे सभी प्यार से औनी कहते थे, वो अपनी बेटी को मना ही लेंगी और साथ ही उसके पिता को भी, क्योंकि बात यहाँ पैसों की थी और कभी कभी पैसा रिश्तों के ऊपर भारी पड़ जाता है। और इसी तरीके से औनी की माँ ने यहाँ अपनी सौतेली बेटी का सौदा करना शुरू कर दिया।
7: देखो अवनी, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, वैसे भी लड़के में खराबी क्या है?
9: माँ वो मुझसे कितना बड़ा है, पूरे 15 साल।
7: तो क्या हुआ 15 साल बड़ा है तो?
9: माँ दो दो बच्चे हैं उसके।
7: तो क्या हुआ दो दो बच्चे हैं तो? वैसे भी कब तक हम तुम्हें बैठा कर खिलाएंगे यहाँ पे?
9: तुम नहीं खिलाती हो मुझे, पापा खिलाते हैं मुझे मेरे।
7: जवान लड़ाती है मुझसे। कह रही हूँ कि उससे शादी कर ले। वैसे भी तुम्हारे पापा कितना कमा लेते हैं, एक तो हमारी गरीबी दूर हो रही है, कम से कम अपने भाई बहन के बारे में तो सोचो, उनका फ्यूचर बन जाएगा।
9: माँ लेकिन लड़के की उम्र भी तो देखो, पूरे 15 साल बड़ा है वो मुझसे।
7: मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम्हारी शादी उसी से होगी। और
9: ठीक है तुम मत सुनो, मैं अपने पापा को बोलूंगी ये।
7: तुम अपने पापा के सामने एक शब्द नहीं बोलोगी।
9: मैं बोलूंगी
7: तो मैं तुमको मारूंगी। चुपचाप शादी करो, तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम है।
9: मैं ऐसा मत करो।
7: अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी।
9: अरे यार कैसे समझाऊं माँ मैं आपको, क्या करूं मैं तो ये शादी नहीं कर सकती। मेरी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं घर छोड़ के भाग जाऊं क्या? हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं घर पे रही तो मेरी शादी तो ये लोग पक्का ही करा देंगे, और पापा को तो इस बात की भनक तक नहीं है कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ। और ये माँ मेरी शादी कराए बिना मानेंगी नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं भाग जाती हूँ।

0: अरे रुकिए जनाब, अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है। अवनी अपनी शादी के दिन ही भाग जाती है और भाग के वो जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस वालों से अवनी बताती है कि उसकी शादी उसकी माँ उससे कहीं ज्यादा उम्र वाले लड़के से कर रही है, वो भी बिना उसकी मर्जी के। पुलिस तुरंत अवनी की बात समझ जाते हैं और अवनी को अपने साथ लेकर उसके घर जाते हैं, जहां पे उसकी माँ और दिग्विजय, जिससे अवनी की शादी तय हुई थी, उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उनके किए की सजा देती है। अवनी की उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन अवनी बहुत समझदार लड़की थी और उसने पुलिस की मदद से अपने माँ द्वारा अपने साथ किए जा रहे हिंसा पर रोक लगाई। अवनी की तरह ही हमारे समाज में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी बहुत ही छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है और वो लड़कियां भी चुपचाप शादी कर लेती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी शादी आपके घर वाले बिना आपके मर्जी से कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ एक तरह की हिंसा ही हो रही है। आप इसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकती हैं और पुलिस की मदद से अपने साथ या आपके आसपास किसी के भी साथ इस तरह की हिंसा हो रही है तो उसे रोक सकती हैं। हमारे भारत में आए दिन हिंसा की अलग अलग खबरें सुनने को मिलती हैं। महिलाओं के साथ हिंसा की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अभी भी हमारे भारत में महिलाएं जागरूक नहीं है कि अगर उनके साथ हिंसा हो रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए। हमारे समाज के सामने हिंसा के अलग अलग रूप देखे जाते हैं, जैसे बहुओं को दहेज के नाम पर जलाकर मार देना, भौजाई या फिर सौतेली माँ के द्वारा लड़कियों को प्रताड़ित करना और उनकी शादी कम उम्र में ही करवा देना, शराब के नशे में अपनी पत्नी को या बच्चों को प्रताड़ित करना, ये सब हिंसा के अलग अलग रूप है। और हिंसा करने वाला किसी भी तरीके से हिंसा कर सकता है। ज्यादातर महिलाओं की ये परेशानी होती है कि हिंसा करने वाला उनके ससुराल का अपना ही कोई खास होता है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ आवाज उठाना महिलाओं को सही नहीं लगता। आप महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि अगर हिंसा को हमारे समाज से रोका नहीं गया या फिर इसे जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका गया तो ये बहुत ही भयंकर रूप ले लेगी। इसलिए ये जरूरी है कि हिंसा करने वाला आपका पति, आपका बेटा या फिर आपका कोई अपना ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आवाज उठाइए और हिंसा को बढ़ने से रोकिए। हिंसा सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यौन उत्पीड़न भी हिंसा का ही एक रूप है। तकलीफ देह तरीके से किसी भी महिला के साथ यौन क्रिया करना या फिर बिना उसकी मर्जी के यौन संबंध बनाना हिंसा का ही एक रूप होता है। इस तरह की हिंसा को ना तो महिलाएं किसी से बताती हैं और ना ही इसके खिलाफ वो आवाज उठाना चाहती हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी से बात भी करना महिलाओं को शर्मिंदगी महसूस होती है। यौन क्रिया को लेकर या फिर किसी भी तरह की अगर आपके साथ हिंसा हो रही है तो इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाइए। अपने क्षेत्र के वन स्टॉप सेंटर, महिला थाना या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करके अपनी समस्या बता सकती हैं। उनके द्वारा आपको तुरंत ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आप घर बैठे 1090 या 112 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके अपनी पूरी समस्या बता सकती हैं। यहाँ पर आपका नाम और आपका परिचय गुप्त रखा जाता है। तो अब डर डर के रहना नहीं है, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा कोनो। बहुत जल्द आप सभी के बीच हिंसा की एक और कहानी लेकर आएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा कोनो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शाओ 90.8 FM।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, सुनो शारदा।

0: न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.शारदा

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से

0: होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महामारी के दौरान टैम्पोन के प्रयोग के कारण भी होता है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
1: ये कुछ विशेष प्रकार के टैम्पोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
0: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
1: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
0: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: मैंने

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
2: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार, लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप? हम तो भाई अच्छे हैं और आपसे बात करके और भी अच्छे हो जाते हैं। बस आपसे बात करने में हमारा मन लगता है। आपसे बात करते करते हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता और कई बार तो ये लगता है कि समय हो गया है लेकिन अभी हमारी बात तो पूरी हुई नहीं। तो आज हम आपके लिए ढेर सारा समय लेकर आए हैं और लेकर आए हैं आपके लिए एक कविता जिसका नाम है झूला। यह कविता आप पहले भी सुन चुके हैं लेकिन हमारा तो मन भरा ही नहीं। मन करता है कि आपके साथ एक बार यह कविता और पढ़ लें। तो सारे बच्चे तैयार हैं झूला कविता सुनने के लिए? तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी कविता जिसका नाम है झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल उड़चल उड़चल उड़चल। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल उड़चल उड़चल उड़चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। कैसी लगी आपको कविता? इस कविता के साथ साथ आपको तमाम तरह के वे सारे झूले याद आ रहे होंगे जिन पर आप झूले हैं। कभी आपको झूलों पर बहुत मजा आया होगा तो कभी आपको झूलों पर बहुत

0: डर भी लगा होगा कि कहीं हम नीचे न गिर जाएं। हमने अपने आसपास तरह तरह के झूले देखे हैं, है ना बच्चों? आपने ये झूले कहाँ कहाँ देखे हैं? मेले में, स्कूल में, पार्क में, बगीचे में और बहुत सारी जगह हम इन झूलों को देखते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम अपने घर आंगन बरामदे में ही झूला डाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम झूला झूलते हैं तो मन से एक गीत निकलता है और हम झूला झूलते झूलते वह गीत गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। बच्चों, झूले के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे गीत और कविताएं होंगी जो आपको याद होंगी, और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि झूले के आसपास कोई गीत कविता उन्हें याद है या नहीं। उन्हें याद होगा तो वे आपको सुना देंगे, आप सुन लीजिएगा तो आप हमें सुना दीजिएगा, तो बस यूं ही गीत गाने और गुनगुनाने का सिलसिला बना रहेगा। अच्छा बच्चों, आपने झूला कविता में बहुत सारे शब्दों पर ध्यान दिया था, याद है आपको? एक शब्द था झूला, जिसमें दो आवाजें हमने सुनी थी, झ की और ल की, शाबाश। और हमने झ और ल से बनने वाले बहुत सारे शब्द भी तो सुने थे, आपने कहे थे और हमने सुने थे। तो इसी कविता में एक और शब्द हमारे पास है और वह है डाली। पेड़ के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग नाम होते हैं। पेड़ में तना होता है, तने में डालियां होती हैं और टहनी होती है और पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं और पेड़ की जड़ होती है। तो कुल मिलाकर किसी एक पेड़ के ये अलग अलग हिस्से होते हैं। कविता में उन दो चीजों के नाम आए हैं जो पेड़ के हिस्से हैं, आपको याद है? शाबाश, आपने कहा डाली और पत्ता, वेरी गुड। तो आपने डाली और पत्ता ये दो शब्द हमें बताए। आज हम डाली के आसपास बहुत सारी बातें करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेड़ की डालियां बहुत मजबूत होती हैं, हम उन्हें पकड़कर झूल सकते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी डाली उतनी मजबूत नहीं होती, बहुत कमजोर होती है, और अगर हम उनसे लटक गए तो धप से हम जमीन पर आ गिरेंगे। तो हमें पेड़ों पर चढ़ने का मजा लेना है तो एक ऐसा मजबूत पेड़ चुनना होगा जिसकी डालियां बहुत मजबूत होती हैं। आप बस डालियां पकड़ते पकड़ते पेड़ के ऊपरी हिस्से पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अकेले पेड़ पर नहीं चढ़ना, नीचे कोई बड़ा व्यक्ति हो उनकी देख रेख में ही हम पेड़ पर चढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि जब हम डाली शब्द कहते हैं तो इसमें कौन कौन सी दो आवाजें आपको सुनाई देती हैं? पहली आवाज है डा और दूसरी आवाज है ली, तो ये शब्द था डाली। लेकिन हम इन शब्दों को कभी भी बोलते समय तोड़ते नहीं हैं कि पहले हम बोलेंगे डा और फिर बोलेंगे ली, हम तो क्या शब्द कहते हैं? डाली, ठीक है? झूला झूल रही है डाली। अब इसमें जो पहली आवाज है वह आवाज है ड की। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें यह आवाज हमें सुनाई देती है और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी आवाज को हम बोलते हैं या इन आवाजों के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं। तो जिस माध्यम से आप हमें सुन पाते हैं और हम आपके मन की आवाज को सुन पाते हैं वह है रेडियो, और इस रेडियो में भी बीच की जो आवाज है वह है ड, रेडियो। आया समझ में?
1: खिलौने वाला आया, खिलौने ले लो, डुगडुगी ले लो, डमरू ले लो, गुड़िया की डोली ले लो।

0: तभी वहाँ कुछ डाकू आए।
1: डाकू,
0: भारी डील डॉग। हाँ, करे डकैती बजा के डंका, सके न कोई बोल।

सभी छुपे डर डर के क्योंकि सभी तो थे डरपोक, डंडा मार के पैसा लूट रहे थे, सब डाकू बेरोक।

वेरी गुड। अब हम कुछ और शब्द कहेंगे जिनमें ड की आवाज है। आपको पहचानना है कि इसमें ड की आवाज शुरू में है या बीच में है या फिर आखिर में। तैयार हैं सारे बच्चे? ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है डाली। इसमें ड की आवाज है। हाँ है। कहाँ है? शुरू में। वेरी गुड। हमारा अगला शब्द है डोलना। डोलना, इसमें ड की आवाज है। हाँ है। कहाँ है? शुरू में। डोलना। अगला शब्द है डंठल। डंठल, कुछ मुश्किल हुई आवाज को पहचानने में? क्योंकि ड और ठ एक साथ आ रही हैं, तो डंठल में शुरू की आवाज क्या है? ठ है कि ड है? शाबाश, डंठल में शुरू की आवाज है ड। अब हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। जो शब्द मैं कहूंगी और जो शब्द आप सुनेंगे, अगर उस शब्द में ड की आवाज है, यह ड की आवाज शुरू में हो सकती है, बीच में हो सकती है और आखिर में हो सकती है, तो आपको शब्द में ड की आवाज को पहचानना है कि वह आवाज है या नहीं। अगर शब्द में ड की आवाज आपको सुनाई देती है तो आप हाँ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे जलेबी। और अगर शब्द में ड की आवाज कहीं भी नहीं है तो आप कहेंगे इमली। अब दोनों शब्द सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। भाई मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, और मैं ये शो खत्म करते ही तुरंत ही जाऊंगी और जलेबी और इमली खाने का इंतजाम करूंगी। मुझे अफसोस रहेगा कि आप बच्चे मेरे साथ नहीं हैं। तो क्या हुआ अगर आप मेरे साथ नहीं हैं? बस मैं आपका नाम ले लेकर आपके हिस्से की भी जलेबी और इमली खा लूंगी। तो तैयार है हम जलेबी और इमली के लिए? खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए। तो आइए हम सुनते हैं कुछ शब्द और आपको बताना है कि इसमें जलेबी है या इमली। अगर शब्द में ड की आवाज है तो आप कहेंगे जलेबी, और अगर शब्द में ड की आवाज नहीं है तो आप कहेंगे इमली। तैयार है? ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा डोरी। जलेबी, डोलना, जलेबी, धरती, इमली, गार्ड, जलेबी, डेरा, जलेबी, बादल, इमली, डोर, जलेबी, डोलना, जलेबी, डमरू, जलेबी, झूला, इमली, ऊपर, इमली, डेरा, जलेबी। शाबाश, आप भी यह खेल अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल सकते हैं, और कभी मौका मिला तो आप और हम मिलकर ये खेल खेलेंगे। आप चाहें तो जलेबी और इमली की जगह कोई और मजेदार शब्द खोजकर रख सकते हैं। शब्द खोजना आपका काम है, मैं बस थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। आप चाहें तो जलेबी की जगह यानी कि हाँ की जगह रख सकते हैं उठा, और ना की जगह रख सकते हैं शब्द पटक। तो शब्द क्या बनेगा? उठा पटक। और बहुत मजा आएगा अगर आप बार बार बहुत जल्दी जल्दी इन शब्दों को दोहराएंगे। जैसे डाली उठा, धरती पटक। मजा आया? तो बस ऐसे ही एक शब्दों की सूची बना लीजिए। आपको अपने आसपास जो चीजें नजर आती हैं उनके नाम बोलते जाइए और आप उठा पटक करते जाइए। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि जब आपने जलेबी की बात शुरू की है तो आप इसकी एक कहानी भी सुना दीजिए। सारे बच्चे बहुत चतुर हो गए हैं। तो जलेबी के आसपास तो मेरे पास कोई कहानी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक कहानी है जिसका नाम है मिठाई। अब मिठाई में तो आप कुछ भी खा सकते हैं, चाहे लड्डू खाइए, जलेबी खाइए या फिर बर्फी खाइए। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मिठाई। पता है बच्चों,
एक दिन गधे का मन कुछ मीठा खाने को हुआ। गधे ने दोस्तों से कुछ मीठा खाने को मांगा। और पता है उनके दोस्त कौन कौन थे? उनके दोस्तों में शामिल थे हाथी, गिलहरी, चींटी, भालू, खरगोश। तो गधे के इतने सारे दोस्त थे। गधे को बारी बारी से सब दोस्तों ने कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए कहा, लेकिन देखते हैं कि किसने क्या मीठा खाने के लिए कहा। तो गधे ने अपने दोस्तों से कुछ मीठा खाने के लिए मांगा। तो पता है भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। गधे को शहद खाना अच्छा नहीं लगा था। खरगोश ने कहा गाजर खा लो। ना, गधे ने यह भी मना कर दिया। फिर पता है क्या हुआ? फिर चींटी ने कहा गधे भाई गुड़ खा लो, गुड़ तो बहुत मीठा होता है। गधे ने इसे भी मना कर दिया। फिर बारी आई हाथी की। पता है हाथी ने क्या कहा? हाथी ने कहा गधे महाराज आप गन्ना खा लो, गन्ना तो बहुत मीठा होता है। लेकिन गधे को यह बात भी पसंद नहीं आई और गधे ने गन्ना खाने से इनकार कर दिया। तो गिलहरी ने क्या कहा? गिलहरी ने कहा आम खा लो, आम तो बहुत मीठा होता है। गधे ने मना कर दिया। दरअसल गधे को किसी की भी कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही थी। उसका मन मीठा खाने को था, तो कोई गुड़ दे रहा था, तो कोई आम खाने के लिए बोल रहा था, कोई शहद खाने के लिए बोल रहा था, तो कोई गाजर खाने के लिए बोल रहा था। गधे का मन मीठा खाने को तो था, लेकिन उसका मन कुछ अलग मीठा खाने को था। लेकिन उसके दोस्त यह बात समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ बिल्ली आई। बिल्ली बोली चलो हम हलवाई की दुकान पे चलते हैं। गधे को यह बात पसंद आ गई। उसने कहा हाँ हाँ हम सब हलवाई की दुकान पर चलते हैं। सारे जानवर हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। अब हलवाई इतने सारे जानवरों को देखकर डर गया। उसने सोचा कि अब ये मेरी दुकान पर हमला करेंगे। लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा आओ बद दोस्त, आई रिपीट, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा आओ दोस्तों आज कैसे रास्ता भूल गए। मुझे लगता है कि अभी अभी जो मैंने लड्डू बनाए हैं उसकी खुशबू से आप सभी मेरी दुकान पर आ गए। तो बिल्ली ने कहा नहीं हलवाई महाराज, हम तो गधे को लेकर आए हैं, गधे का मन कुछ मीठा खाने को है, इसलिए हम उसे आपकी दुकान पर ले आए। तो हलवाई ने कहा हाँ हाँ तो आप बैठिए, बताइए आपको क्या खाना है। तो गधे ने पूरी दुकान को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, और उसे दिखी क्या? जलेबी। उसने हलवाई से कहा कि मुझे तो बस ये जलेबी खानी है। तो हलवाई ने गधे के साथ साथ गधे के सभी दोस्तों के लिए जलेबी परोसी और सब ने मजे से जलेबी खाई। तो ये तो थी मिठाई कहानी। अब गधे को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा मीठा खाना है। देखिए भाई, गुड़ भी मीठा होता है, गन्ना भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है और गाजर भी मीठी होती है। लेकिन गधा ये बता ही नहीं पा रहा था कि उसका मन क्या मीठा खाने को हो रहा है। बस उसने हलवाई की दुकान पर अपनी मनपसंद जलेबी देखी तो उसने कहा मुझे तो जलेबी खानी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही काम करते होंगे अपने घर में। घर में दिन भर ये कहते होंगे कि मुझे कुछ चटपटा खाना है, मुझे कुछ मीठा खाना है, मुझे कुछ नमकीन खाना है, लेकिन वे सही सही नाम नहीं बता पाते कि उन्हें मीठे में क्या खाना है, चटपटे में क्या खाना है और नमकीन में क्या खाना है। बस यही कहते रहते हैं, कुछ मीठा, कुछ नमकीन, कुछ चटपटा।

0: आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई किस्सा है जिसमें मीठा खाने की बात है, जिसमें चटपटा खाने की बात है, या जिसमें नमकीन खाने की बात है और आप बता ही नहीं पा रहे, तो ऐसे मजेदार किस्से हमारे पास लिखकर जरूर भेजिएगा। हमें आपके किस्सों की प्रतीक्षा रहेगी। हमारा पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। हम आपके किस्सों की प्रतीक्षा करेंगे और साथ ही हम आपकी कहानी कविताओं की भी प्रतीक्षा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलती हूँ एक मजेदार कहानी और कविता के साथ। तब तक के लिए सब बच्चों को ढेर सारा प्यार, लाड़ और दुलार। नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: चन चन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
4: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
5: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सबका समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
0: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है।
3: अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है,
2: जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो। खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: ये हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं, और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती, कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

0: We welcome you all back to our show. जैसा कि हम स्टार्टअप चर्चा पे चर्चा कर रहे थे विद डॉक्टर दिव्या राजपूत एंड सुरभि मैम. मैम दिव्या मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बिकॉज आप काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इंक्यूबेट करते हैं रेगुलरली, तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो है इंक्यूबेटर्स को ऑफर करने चाहिए जिससे कि स्टार्टअप्स को जो है यू नो दे आर नर्चर्ड इफेक्टिवली एंड यू नो स्टेप अप टू द ग्रोथ.
1: इंक्यूबेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है. हम इसको बोलते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्रिपल हेलिक्स मॉडल. ट्रिपल हेलिक्स जहाँ पे की गवर्नमेंट है, जहाँ पे की कॉर्पोरेट है और जहाँ पे की एकेडेमिया है. सो इंक्यूबेशन अक्सर आपने स्पेशली इंडिया में जब हम इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं तो इंक्यूबेटर्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से शुरू हुए थे. हमारा स्टेपी जो है या अभी शारदा लॉन्च पैड जो है, ये हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हाउस्ड हैं. बिकॉज हमें ये पता है कि एकेडेमिया में टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं. हमें ये भी पता है कि एकेडेमिया में हमें अच्छे मेंटर्स मिल सकते हैं, एकेडमिक मेंटर्स. लेकिन जो हमारा पर्पस है इंक्यूबेशन करने का, वो गवर्नमेंट के साथ सॉल्व होता है या फिर कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज इंडस्ट्रीज के साथ सॉल्व होता है. सो इसलिए इंक्यूबेशन इसके यू नो कोर जंक्शन में है जहां पे ये ट्रिपल हेलिक्स को कवर करता है. सो इंक्यूबेशन में हमारे पास अर्ली स्टेज के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम कुछ लोगों को सिर्फ आइडिएशन की अपॉर्चुनिटी दे सकें. तो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस कहते हैं. तो ये एक साल की हम फेलोशिप देते हैं जिसमें कि जो एंटरप्रेन्योर है वो देख सकते हैं कि भाई इज एंटरप्रेन्योरशिप फॉर देम और नॉट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो बने भी हैं कि नहीं. बिकॉज आप इतना ज्यादा रिसोर्स अरेंज कर लेंगे और बाय चांस आपको थोड़े टाइम बाद लगे नहीं ये तो हॉबी थी, मतलब हाँ दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, अब मुझे आई हैव ग्रोन ओवर इट. तो बेटर है कि आप यू फेल फॉरवर्ड, यू फेल अर्ली, यू नो. सो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप इन रेजिडेंस का प्रोग्राम है. फिर हमारे पास कुछ लेवल के प्रोग्राम्स हैं जिनको हम बोलते हैं I2P, मतलब आइडिया टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं. हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रयास प्रोग्राम है जिसमें हम उनको अप टू 10 लाख की ग्रांट फंडिंग देते हैं. इनोवेटर लेवल के हैं ये. इसके बाद जो P2M जिसको हम बोलते हैं, P2M सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू मार्केट. तो प्रोडक्ट टू मार्केट में हमारे पास इंक्यूबेशन का प्रोग्राम है, हमारे पास हाइब्रिड इंक्यूबेशन है और हमारे पास फिजिकल इंक्यूबेशन है. लेकिन ये दोनों जो इंक्यूबेशन के प्रोग्राम्स हैं इसके लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. और उसके बाद जब आपने मान लीजिए मार्केट भी क्रैक कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतर गया है और आपको लगता है कि हमने एक ज्योग्राफी बहुत अच्छी कर ली और अब हम दूसरी ज्योग्राफी में जाना चाहते हैं, या हमारे पास एक नंबर जितने एक लोकेशन से आ सकते थे उतने हमने कैप्चर कर लिए पूरी मार्केट, अब हम दूसरी जगह जाके उसको अपने मॉडल को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. तो हम एक्सेलरेशन के प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं और हम फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं. हम लोग सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ग्रांट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और हम लोग को इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को. सो सबसे जो जरूरी एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप पे ताकि वो स्केल अप कर पाए, एक तो है अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टार्टअप खुद बनाएंगे. दूसरा है मेंटर्स जो कि हम एज इंक्यूबेटर्स देते हैं, एक मेंटर प्लेटफॉर्म देते हैं. हमारे यहाँ पे तो इनफैक्ट एक मेंटर इन रेजिडेंस भी है जो हमेशा स्टार्टअप्स के लिए हाफ अ डे टाइप्स ही इज ऑलवेज अवेलेबल. सो समबडी हुज बीन एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, ही इज आर JSS एलुमनाई ओनली, हमारे स्टेप के एलुमनाई है एंड ही रन्स हिज मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी. सो ही इज द वन हु इज ऑलवेज अवेलेबल टू स्टार्टअप्स. और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डोमेन एक्सपर्ट्स रहते हैं who bring that domain value also, because technology itni jaldi jaldi grow kar rahi hai. So for any one person to keep pace with every development in technology is not possible. So the expert experts that we have, domain experts, as well as ek maine bahut acha jo example dekha hai hamare JSS step mein, wo hai jahan pe entrepreneurs hi entrepreneurs ko support karte hain. So hamara jo entrepreneur network hai, इवन हमारा एलुमनाई नेटवर्क है, दैट इज अ वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी. सो एंटरप्रेन्योर्स की आपस में क्रॉस लर्निंग बहुत स्ट्रांग है. बिकॉज दे ऑल्सो कम फ्रॉम यू नो डिफरेंट बैकग्राउंड, दे हैव सो मच एक्सपीरियंस. तो या सो वो क्रॉस लर्निंग के हम उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं. सो मुझे लगता है कि इंक्यूबेशन कैन बी वाइड, इट कैन बी यू नो ह्यूज. इंटरनेशनल एक्सपोजर हो सकता है, इसके अलावा यू नो एग्जीबिशन की अपॉर्चुनिटी हम उनको देते हैं, हमारे साथ एग्जीबिशन लगाने का भी अपॉर्चुनिटी देते हैं. सो मार्केट एक्सेस के लिए जो पॉसिबिलिटी हो वो देते हैं. लेकिन आई थिंक जो कोर पे जरूरी है वो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम. जैसे मैंने आपको बताया कि यू नो अर्ली स्टेज के, मतलब एंटरप्रेन्योर मैं बन भी सकती हूँ कि नहीं, एक तो ये लेवल, दूसरा फिर आई टू पी, आइडिया टू अ प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट टू मार्केट, और फिर एक्सेलरेशन. सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग रन करते हैं. एंड वी इवन हैव अ प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट इनोवेशन. अगर कॉर्पोरेट कभी सीखना चाहे कि ये इनोवेशन क्या चीज है, तो यू नो वी ऑल्सो हैव प्रोग्राम्स फॉर दैट.
0: दैट्स अमेजिंग. सुरभि मैम, आपका स्टार्टअप भी इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है, तो इनक्यूबेट होने से आपको क्या लगता है कि आपको क्या फायदा हुआ है? यू नो वॉट kind of gain you've gained out of the incubation center?
2: Yeah, so I'll be honest here. I discovered what is incubation bahut der se. Mera idea product tak pahunch gaya tha. By then I was doing a part time work because I needed money to fund my startup. And then when it was in the market, jab humne launch kar diya tha bakery.com platform, we had some 15-20 bakers who were baking on the customer demands. That's when I wanted an office space. तो मैं ढूंढ रही थी. तब मैंने पढ़ा कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंक्यूबेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग इंक्यूबेशन फॉर एवरी लेवल ऑफ स्टार्टअप्स लाइक दिव्या मैम जस्ट एक्सप्लेन. सो दैट्स व्हेन आई केम टू नो व्हाट इज इंक्यूबेशन. एंड लकीली आई वाज इन नोएडा एंड आई हैपन टू बी एट जेएसएस एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज द वैल्यू दैट अ स्टार्टअप गेट्स बाय बीइंग इंक्यूबेटेड. ऑफकोर्स द मेन थिंग दैट आई लर्नड और दैट आई गेन्ड फ्रॉम देयर वॉज अ नेटवर्क. Right? Like she said, there is a network of other startups also. And हर कोई आपका product नहीं बना रहा है. वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप शायद नहीं जानते हो करना. And it is so easy to learn from someone else who's sailing in the same boat. And even on the cost, it is effective because someone else has already gone through the journey of learning. तो अगर मुझे even if I have to hire a vendor for something, मैं किसी आसपास वाले startup से बात कर लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई vendor चाहिए, दे टेल मी कि अच्छा मैंने ये 3-4 से ट्राई किया, दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड दिस इज द बेस्ट इन क्वालिटी. सो आपकी वो लर्निंग इजी हो जाती है, आपकी वो जर्नी इजी हो जाती है एंड आपका टाइम बहुत बचता है फ्रॉम दैट नेटवर्क. 1, 2 मेंटर्स हेल्प अ लॉट. हमें लगता है कि सी आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट आई ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस कि मैं संभाल लूंगी. बट ओनली व्हेन यू जंप इनटू द पूल यू रियलाइज कि स्विमिंग कैन नॉट बी डन. यस, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि आपको कूदना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा. एंड देन यू नीड अ पंचिंग बैग. यू नो फाउंडर्स कई बारी हम लोग अपने अपने में ही ट्राई करते रहते हैं कि यार ये कर देंगे बहुत अच्छा बन जाएगा, ये कर देंगे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आएगी, बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट बिकॉज हम अपने साइलों में काम कर रहे हैं. यू नीड टू गेट आउट एंड टॉक टू पीपल, गेट दैट पॉइंट ऑफ व्यू. एंड वो पॉइंट ऑफ व्यू मेंटर्स से बेटर नहीं बता सकता कोई और, क्योंकि दे हैव सीन सो मेनी अदर स्टार्टअप्स लाइक योर्स, अनलाइक योर्स, एंड दे हैव गेन्ड दैट एक्सपीरियंस of so many startups when no one person can do in a lifetime. So it's always better to have a second point of view or a third point of view, because when you are in an incubator aapko ek do nahi kai log mil jate hain jinse aap brainstorming kar lete ho, jinse aap nayi cheeze seekhte ho ki acha ye technology nahi, there is a better technology that you can employ, I have read about it, or why don't you attend this session which is talking about this technology, and you gain so much out of it that you don't even realize that you have gained so much of skill. It's such a passive learning. But when it gets applied, you realize कि अच्छा ये तो मैंने यहीं से ही सीखा है, मेरा पुराना experience है जरूरी, but जो incubator से experience आता है, there is no match to it. And of course, when you go for funding, all of that experience helps you a lot.
0: मैम, थोड़ा सा आप अपने स्टार्टअप के बारे में ब्रीफिंग दीजिए. Although that should have been happened in the beginning, you know, I should have asked you, but थोड़ा सा मैम स्टार्टअप हमारे लिसनर्स के लिए, so that they'll know exactly what you're doing.
2: श्योर. सो bakehoney.com इज एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म. एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म क्या करता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को आपके सामने लाता है. हाउ बेकहनी इज डिफरेंट इज हम लोग खाली बेकरी को केटर करते हैं. एंड टुडे देर आर सो मेनी वुमेन होम बेकर्स एंड दे आर वर्किंग प्रोफेशनली. हम एक तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं. और कैसे सपोर्ट करते हैं कि देर आर कस्टमर्स ऑन वन साइड हु वांट हेल्दी होममेड प्रोडक्ट्स, ऑन द अदर साइड देर आर पीपल हु आर मेकिंग दीज हेल्दी होममेड प्रोडक्ट्स बट दे डोंट, बोथ ऑफ देम कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, क्योंकि वो होम बेकर शायद आप ही के एरिया में हो, आपको पता ही नहीं है. क्योंकि वो होम बेकर की एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, वो केवल बेकिंग पे फोकस कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने पे फोकस कर रहे हैं लेकिन उसे मार्केट नहीं कर सकते. सो वी गिव देम अ प्लेटफॉर्म ऑन वन साइड. ऑन द अदर साइड कस्टमर्स हैव अमेजिंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि टुडे विद इंटरनेट विद द ग्लोबलाइजेशन हमें सब पता है कि यू नो किस तरह के डिजाइन ट्रेंडिंग है इन द वेस्ट. बेकिंग हैज कम टू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट. So we are all exposed to the new trends in baking, but we don't know who can make that for us. So we give that platform to the customers कि आप यहाँ पर नए latest designs, latest ingredients, latest quality of products को explore कर सकते हो, being designed and being made by expert home bakers, and you can get them customized to your requirement. Mm-hmm. So that's the platform bakehoney.com. Currently we are operational across NCR in all the regions of NCR and in parts of Bangalore.
0: मैम ब्रेक में जाने से पहले दिव्या मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी. स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अबाउट फाउंडर, इट इज अबाउट द टीम एज वेल. पूरी टीम है बट एक विजन है वो फाउंडर का होता है. तो ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए एक फाउंडर को जिससे वो अपना विजन, वो इनोवेशन की कल्चर जो है वो अपनी टीम में भी बिल्ड कर पाए टू हैव अ सक्सेसफुल स्टार्टअप.
1: आई थिंक सबसे पहला जो स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मंडे मॉर्निंग मीटिंग.
0: The culture.
1: Yes. So, you know, see, I think startups are not just about profit. Startups are more mission-driven organizations. अब आपका founder का वो mission है, लेकिन वो founder का mission आपकी team में कैसे जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए आपको regular brainstorming उनके साथ करनी होगी. आपको उनके साथ नए products को क्रिएट करने होंगे. सो यू नो बिकॉज सिर्फ आपके कहने से प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते. आपकी टीम अगर आपके साथ है जिनकी डिफरेंट डाइवर्स एक्सपर्टीज है तो जॉइंट प्रोडक्ट्स कुछ क्रिएट हो सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि रादर मैं कहूंगी कि कभी कभी ये थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है. बहुत सारे स्टार्टअप्स को ऐसा लगता है कि हमारी टीम्स यू नो बिजनेस क्रैक नहीं कर पा रही हैं, सेल्स क्रैक नहीं कर पा रही हैं. तो उस केस में हमने ये भी देखा कि कभी कभी हो सकता है कि वो सही यू नो रिक्रूटमेंट ना हो. जैसे कॉर्पोरेट में भी होता है, जैसे कहीं भी होता है, एकेडमिक्स में होता है, कैन बी यू नो मे बी पीपल नॉट फिट फॉर दैट रोल, राइट. तो एक तो सही हायरिंग, सही हायरिंग में फिर बहुत जरूरी है कि यू नो इफ द स्टार्टअप्स कैन क्रिएट एन ईसॉप पूल, मतलब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ताकि एम्प्लॉयज को भी लगे कि अगर कल को कंपनी ये बड़ी हुई तो मेरा इसमें ओनरशिप है. तो वो ओनरशिप दे पाना. और अक्सर यू नो एंटरप्रेन्योर्स बिकम द बिगेस्ट बॉटलनेक आल्सो बिकॉज हम डेलीगेट नहीं कर पाते. हमें हर चीज अपने तरह चाहिए बिकॉज हम परफेक्ट हैं. हमें लगता है हमारा काम परफेक्ट है तो हम ही एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, सो यू नो फाउंडर्स टू लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेशन एंड नॉट बिकमिंग अ बॉटलनेक. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप कर लेते, पर कुछ तो हो जाएगा, आपके पास आके नहीं तो रुक जाएगा. So, you know, the more people will start delegating power, delegating work, delegating responsibility, okay? And as well as giving ownership to their employees, at least core team. So, you know, every founder should create an inner circle for themselves. There has to be, you know, at least 5 people in your inner circle, including an advisor, maybe an incubator head, maybe somebody. Wo 5 log jin pe aap aankh band karke believe karte hain, right? Create your inner circle. That's one tip. Two, start delegating responsibility. आप खुद सब कुछ नहीं कर सकते. Third, जो आप products market में उतार रहे हैं उनको co-create कीजिए अपनी teams के साथ. ठीक है, उनको opportunity दीजिए. जाइए ना एक retreat करके आइए, ऋषिकेश चले जाइए, ठीक है, नैनीताल चले जाइए, एक रिट्रीट करके आइए, ठीक है. सो यू नो अपनी टीम को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए अपने साथ ग्रो करने की, बिकॉज आपने सही कहा वानी कि स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अबाउट द फाउंडर, राइट, बिकॉज फिर तो हीरोज बनते हैं ना सिर्फ,
3: एग्जैक्टली
1: जहाँ एग्जैक्टली हाँ. सो यू नो स्टार्टअप तो वहां बनता है जहाँ टीम साथ में चलती है. सो माय सजेशन टू ऑल द स्टार्टअप फाउंडर्स इज क्रिएट योर इनर सर्कल. आपके वो 5-7 लोग जो यू नो आंख बंद करके हर समय आपके साथ खड़े हैं, और उनको फिर गिव देम अ पार्ट ऑफ योर कंपनी, गिव देम ओनरशिप, मेक देम को फाउंडर्स. एंड बिकॉज हमने हमारे अभी यू नो दो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छी फंड रेज किया है. तो एक स्टार्टअप ने 30 करोड़ रेज किया सन फार्मा से, एक और स्टार्टअप ने 40 करोड़ में वो कंपनी इनफैक्ट अक्वायर और हायर डील हुई है. तो सेम यू नो बैलेंस टीम, बहुत बैलेंस टीम है उनकी जो कोर टीम है, और यू नो प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है. सो एंड यू नो दे वर फुली इन्वेस्टेड इन टू वट दे वर डूइंग. सो वंस दैट हैपन्स आपकी टीम का भी आप पे कॉन्फिडेंस होगा, उनको पता है कि ऐसा नहीं कि यू नो आप खुद तो कहीं पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो और साथ में उनको काम पे लगाए और उनको कहा है कि स्टार्टअप है तो सैलरी कम मिलेगी. ऐसे नहीं होता, ठीक है, उनका एक फेथ होना चाहिए आप पे. तो वो फाउंडर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यू नो परकुलेट दैट मिशन इन द टीम इटसेल्फ.
0: That's amazing. That's a great advice, ma'am. I think इसके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद.

0: तो हम मैं वापस आपका स्वागत करती हूँ सुनो शारदा के स्टार्टअप चर्चा शो में. और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे साथ है मैम दिव्या राजपूत एंड मैम सुरभि. सुरभि मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कैसे ये आइडिया आया स्टार्टअप का, यू नो, इन बेकरी एंड ऑल दैट? कैसे आपको ये स्टार्टअप का आइडिया आया, प्लस इनोवेशन क्या रोल प्ले करता है इन एड्रेसिंग द सोसाइटल चैलेंजेस?
1: सो आइडिया कैसे आया, इट्स लॉन्ग स्टोरी. आई जस्ट कट इट शॉर्ट. सो इट वॉज माई सन्स बर्थडे, ओके, एंड वी हैड जस्ट शिफ्टेड. हम लोग दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुए थे एंड विद इन अ मंथ बर्थडे पड़ा एंड हमने सोचा एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं. सो वी हैड प्लान्ड एवरीथिंग वेरी वेल. ओके, इट वॉज अ न्यू हाउस, सब गेस्ट्स भी आए थे. इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस वार्मिंग एंड हिज बर्थडे. सो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. अब बच्चों का जैसे होता है, ही वॉज 4 years एट दैट टाइम. सो ही हैड अ थीम इन माइंड कि मुझे टाइगर चाहिए केक में. एंड एट दैट टाइम हम ढूंढते रहे, वी डिडंट नो अ गुड बेकर अराउंड एंड वी वॉन्टेड अ गुड थीम. सब कुछ परफेक्ट था एक्सेप्ट फॉर द केक. एंड दैट्स वेन वी फेल्ट यार, आई मीन आई नो देर आर पीपल हु कैन मेक सो गुड केक्स, बट आई डोंट नो हाउ टू रीच देम. And that's when we started working in the hindsight on this idea. But gradually, tab I was also in my job. मतलब वो आई चीज और चली गई. Then gradually we realized it once again. We felt कि यार, I want a you know sugar free bread for my mom. Sugar free cake for my mother. She's a diabetic. And so on. So there were so many incidents which made me feel कि इसकी requirement जब मुझे पड़ रही है, I'm sure there are many others who need this.
2: Exactly.
1: And then I came to know about home bakers and people who are actually making this. तो मैं वहां तक कैसे पहुंचू? That's when I felt ki we need to build this as a platform. Humne pehle shuru mein khali content shuru kiya ki kya sahi hai, kya galat hai. And as a mother, I felt ki ingredients are important for my children. So we started writing about all of that. We were a small team of 3-4 people. Hum log bas likhte the. And fir hume bakers ne khud approach kiya. We did a small event, bakers aaye. And we realized ki there are so many of them. Only in Noida ki jo log इस तरह की बेकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, हु आर कॉन्शियस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हु आर कॉन्शियस ऑफ डिजाइंस एंड हु फील फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड नॉट जस्ट केक्स. आप जो डेली बिस्किट्स खा रहे हैं, वी डोंट रियलाइज उसमें कितने केमिकल्स जा रहे हैं, हाउ अनहेल्दी इट इज, इवन इफ इट इज सेट टू बी यू नो हाई फाइबर और लो शुगर, इट इज स्टिल हैविंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स. सो देर इज अ लॉट वी कैन डू अबाउट चेंजिंग आर ईटिंग हैबिट, इम्प्रूविंग दैम विद ओनली सोर्सिंग इट फ्रॉम द राइट प्लेस. सो दैट्स वेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग टूगेदर दीज बेकर्स एंड मेकिंग इट इन टू अ प्लेटफॉर्म विच इज बेनिफिशियल ऑन बोथ द साइड. दीज बेकर्स गेट देयर बिजनेस, दे आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव देयर ओन चैलेंजेस एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड एज अ कस्टमर आई नीड देम. एंड दैट्स वेन वी मेड दिस प्लेटफॉर्म. नाउ अबाउट इनोवेशन, ऑफ कोर्स इनोवेशन इज नीडेड एट एवरी स्टेप. अगर आप वो कर रहे हो जो कोई और कर रहा है, तो आप एक्चुअली उस प्रॉब्लम को ज्यादा एक पॉइंट के बियॉन्ड सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो सेम ही तरीके से आप अटैक कर रहे हो ना उसको. सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन द सोसाइटी, इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो प्रॉब्लम पूरी तरह से आप टैकल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है. सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू वाटर, वेदर

0: is, I'm talking about larger picture, whether it is related to, you know, environment. Innovation is needed, and innovation doesn't need to be high tech. You know, innovation can be as small as replacing a plastic with a jute bag. You know, so it's a small innovation, but it is an innovation in itself because you're breaking the barrier.
1: I've read it somewhere that, you know, serious innovation is greater than invention.
0: Right. You don't need invention.
1: We don't need invention.
2: दिव्या मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. आपके हिसाब से मैम, जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, जो विमेन हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं, आपकी तरफ से उनको क्या वो पीस ऑफ एडवाइस होगी जिससे वो जो सोसाइटल चैलेंजेस फील करते हैं वो चैलेंजेस को वो कवर अप कर पाएं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाए?
3: मेरा सबसे जो आई थिंक शुरू का सजेशन होगा वो ये रहेगा कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए. ठीक है, फॉर विमेन. विमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइक सुरभि सेड थोड़ी देर पहले कि यू नो व्हाई जस्ट एंटरप्रेन्योर्स, हर विमेन के लिए ये जरूरी है. पर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए भी जरूरी है बिकॉज अब आप यू नो सिर्फ एक बिजनेस ओनर नहीं है, अब आप एक लीडर भी बनने जा रही हैं. सो जब आप लीडर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, बट अदरवाइज आपका बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो एक आप अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए. जो मैंने बोला, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है एक आपका इनर सर्कल. ठीक है, वो लोग जो आपके लिए अवेलेबल हैं, किसी तरह का यू नो आपको किसी मीटिंग में अचानक जाना पड़ेगा, ठीक है, और वाइल मे बी यू आर वर्किंग फ्रॉम होम. ठीक है, आप रिमोटली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अचानक जाना पड़ेगा तो घर में कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. तो सबसे पहले आपके दिनचर्या को स्टडी कीजिए. देखिए, आपको आपकी अगर आपके बिना वो चीज चले, चाहे फिर वो आपका घर हो चाहे आपका बिजनेस हो, आपके बिना अगर वो जगह चले तो उसके लिए कौन चाहिए? आपका रेप्लिका चाहिए या यू नो कोई लो स्किल्ड वर्कर भी चल जाएगा? तो सबसे पहले अपने रिसोर्स एलोकेशन करिए, फिर देखिए कि फंड्स कहाँ चाहिए. ठीक है, हम अक्सर अंडर फंडिंग की वजह से हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक. और फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरे तुम तो कितने टाइम से स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर हो. सो वो शायद यू नो बहुत ज़रूरी नहीं है करना, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आपने प्री प्लान कर लिया तो पहले अगर हो सके तो एंटरप्रेन्योर जैसे ही आप बनने की सोचें तो 6 महीने प्लानिंग कीजिए. आपकी रिसोर्स प्लानिंग कीजिए, फंडिंग के रिलेटेड, मैन पावर के रिलेटेड. अगर आपको आपके माइनस वो जगह चल सकती है कि नहीं चल सकती है, ठीक है, वो सोचिए. एक्सपर्ट्स अरेंज कीजिए, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं. आपका एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप कीजिए और एक आपका इनर सर्कल क्रिएट कीजिए. सो मेरा ये सजेशन रहेगा, 6 months ऑफ गुड प्लानिंग कैन एक्चुअली सेव ईयर्स फॉर यू. सो वो एक मेरा सजेशन रहेगा टू ऑल वेमेन एंटरप्रेन्योर्स. और फिर जब एक बार आपने रिसोर्सेस अरेंज कर लिए तो उसमें 100% कूद जाइए. आप उसको 2 से 3 साल देखे देखिए, आपको मजा आ जाएगा. सो मेरा बस ये सजेशन रहेगा हमारी वेमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए.
2: सुरभि मैम, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एज अ स्टार्टअप फाउंडर, वेमेन स्टार्टअप फाउंडर, फॉर ऑल द वेमेन स्टार्टअप फाउंडर्स आउट देयर.
0: सी, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ टफ जर्नी. एंड जो चीज टफ नहीं है उसमें मजा क्या है? सो face it, if you have decided, it is a roller coaster ride, but maza aayega. And ultimately what you want is something that you should be clear on. Aapke dimag mein clear hona chahiye, mera ultimate gain kya hai, mera ultimate goal kya hai, mujhe kitne time mein kya achieve karna hai. Set your goal right, and like Divya ma'am said, keep your support system ready so that you can juggle between so many things, because juggling is important for you to be a founder, be it a man or a woman. You have to juggle with so many things, and women have to do it more. So be ready for that juggle, be ready for the roller coaster ride. It is rewarding at the end, but you have to be patient and you have to be having your perseverance on. So wo aap jab tak patiently dheere dheere aage badhte jayenge and apna goal sahi rakhe, goal set rakhe, so there is no looking back.
2: We say that dreams which are not, you know, which don't scare you aren't big enough.
0: Right.
1: Absolutely.
2: So, you need to get a little bit scared and then डर के आगे जीत है लाइक वी ऑल से. सो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस स्टार्टअप चर्चा. आई विश टू थैंक दिव्या मैम एंड सुरभि मैम फॉर कमिंग हेयर एंड यू नो शेयरिंग देयर इनसाइट्स एंड थॉट्स एंड देयर जर्नी विद अस. और आई एम श्योर हमारे जो श्रोता हैं और जो भी हमारा शो देखेंगे उन्हें एक बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, स्पेशली टू द वुमेन जो कि एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं. उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी, वर्ड ऑफ थॉट्स होंगे एंड दे कैन मूव अहेड सक्सेसफुली. थैंक यू सो मच.
4: अभी आप सुन रहे थे विमेन्स एंटरप्रेन्योर्स थीम पर आधारित ये स्टार्टअप चर्चा. इस चर्चा में शामिल थी डॉक्टर दिव्या राजपूत, द स्टार्टअप पॉलिसी एक्सपर्ट एंड इनक्यूबेशन हेड एट JSS. दूसरी हमारी गेस्ट थी डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, अ लीडरशिप एंड स्किल कोच. और तीसरी मेहमान रही मिस सुरभि गुलाटी गुप्ता, द इंस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर ऑफ अ विमेंस बेकरी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म. और इस प्रोग्राम को संचालित कर रही थी या यूं कहें कि मॉडरेटर थी मिस वाणी कपूर, शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन से. आशा करता हूं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा. निश्चित तौर पर खासकर उन महिलाओं को जो इस क्षेत्र में आकर बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहती हैं. और फिर कहते हैं ना कि एक आइडिया आपकी लाइफ को बदल सकता है. तो ये परिचर्चा आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं. ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति. नमस्कार.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: हुआ?
9: हम रोज 29 की रात को सोते हैं, और जब सुबह उठते हैं ना तो वापस 29 होती है।
8: हाँ? मतलब
9: हमारी 30 नहीं आ रही है तितली।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे, बादशाह के गाने सारे याद है।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। तुमने शादी के बाद भी ऐसे ही रहे, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
2: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
1: सच्ची? ये ऐसे

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: गगन खोखरी फतेह।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: 2018 में यहाँ पे JEE-AES के 22 केसेस मिले थे, जिसमें दो लोगों की डेथ भी हो गई थी।
1: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे, हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफ़ी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पे मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पे हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
0: तो आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान्स यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
2: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
3: उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
0: कोविड में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके, JEE-AES रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
1: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके माध्यम से हम लोग JEE-AES केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ ये।
0: हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
2: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: I'm sorry नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
2: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: वॉट इज दिस? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो वॉट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: You know, Shail, it really hurts.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी

सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: क्या आपको पता है प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को मां के सीने से लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है जो नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है।
3: इस प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहते हैं। प्रसव के बाद अस्पताल से घर वापस आने के बाद घर पर भी नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उसे सीने से लगाकर रखना चाहिए।
2: कंगारू मदर केयर सीखने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी आशा या नर्स दीदी से संपर्क कर सकते हैं।
3: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएंगी खुशियाँ बेमिसाल।
2: शिशु की सही देखभाल से फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा लगता है।
2: और क्या अच्छा लगता
1: है? जो बातों ही बातों में मेरी आंखों के डीएम में स्लाइडिंग करती है ना, अच्छा लगता है।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi Priya, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: प्ले, क्या बात है,

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: ये मीनू है, मेरे बेस्ट फ्रेंड, और ये प्रशांत है, मेरा तेरा
5: चले
4: चले

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
1: हे भैया, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।

0: और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
1: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
0: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
1: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
0: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों
2: और गर्भवती महिलाओं को
0: हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
1: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से ठिशुम ठिशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
0: क्या कहा तुमने?
1: Kids want to know मिस मच्छर कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
0: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
1: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: पानी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से गुड बाय।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी? और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरे। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहे, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखे, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: आई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की, मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें? वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है? राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
2: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराए नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
1: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
2: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
1: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
2: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
1: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर

0: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी कौन थी औरतें?
3: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
2: क्या है राज?
3: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
7: बिल्कुल सोचा है पापा।
6: क्या सोचा है?
7: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
6: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
7: जी पापा।
6: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
7: हाँ पापा बिल्कुल।
8: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
9: So where are you? The world is here at Sharda University.
10: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना